0: दोस्तों सदीप को स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और ये हमारा 705th एपिसोड है ऑन प्लेन से मीडिया फ्रीक्वेंसी 96.9। और हमेशा की तरह साहिल हैज जॉइंड अस ऑन पैनलिंग और इस बार भी हमारे पास एक गेस्ट है जो ऑलरेडी आ चुका है हमारे स्टूडियो में नान, उससे भी हम बात करते चलेंगे। हम पहले क्या करेंगे इस जैसे हम नॉर्मली करते हैं, एक सॉन्ग साहिल के पास है एंड दिस द बेस्ट सॉन्ग दैट ही इज सिलेक्टेड फॉर द डे, वो हमें सुनाएंगे और उसके बाद में देन वी आर गोइंग to have this interview with Nana, जिसमें हम काफी कुछ आपको बतलाने वाले हैं। We are pretty excited because this is the first time that we are going to hear something about Vietnam. Like we have had other guests before. हमने आपको remember होगा कि इससे पहले हमने लुलु से बात किया था, we talked about China, और उससे पहले हमने कश्मीर जो पार्ट ऑफ नज़दीक है पाकिस्तान के बॉर्डर, वी टॉक्ड अबाउट दैट। और भी हमने जो काफ़ी अलग अलग लोगों से बात किया है, फ्रॉम ज़्यादा करके हमारे जो भारत के दोस्त आते रहते हैं, वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन आज काफ़ी डिफरेंट रहेगा बिकॉज क्योंकि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वियतनाम। जी हाँ, लेकिन उससे पहले जो सॉन्ग साहिल है सिलेक्टेड, मे बी आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट गेसिंग, मे बी इट माइट रिलेट टू द फीफा वर्ल्ड कप, बट नेवर नो क्या साहिल हमें सुनाने वाला है। बट ऑन फीफा इटसेल्फ साहिल विल अपडेट अस, स्पेशली जो गेम आज न्यूजीलैंड के हुआ था विद बेल्जियम, हाउ डिड दैट गो?
1: विल टॉक आफ्टर द सॉन्ग,
0: आफ्टर सॉन्ग आप बात करना चाहते हो? ओके ठीक है, आफ्टर द सॉन्ग देन साहिल विल लेट अस नो अबाउट दैट पर्टिकुलर गेम। लेकिन फीफा का तो फीफा चल रहा है एंड वी विल ट्राई टू शेयर क्विकली अ लिटिल बिट अबाउट दैट एंड देन वी विल प्रोसीड विद आवर इंटरव्यू। तो साहिल, यू वांट टू प्ले द सॉन्ग नाउ?